इलेगी लाउट टूट आउट सक्स हो गया मैं आठवीं लाउट चाउ के नैनो ना वंग मिपी बल्ले पेनिक पता सिला लगे गुन्ना वामा सिला लगे आ ना अब लोगों ने तमाने की बल्ले में अम्मा के चंग में उन्हें तुसंग ना तमाल उतालो तुमने सुलाओ मिकित्सी तो सायक्समें